0: दिल की कहानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी। दिल की कहानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो तारों दरिया से हूँ, चंदा की चांदनी हो तारों दरिया से।

0: बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: सावन में झूले पड़े, सावन में झूले पड़े, हिल मिल झुलाए हम, हिल मिल झुलाए हम।

0: कहानी दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
0: चंदा की चांदनी हो।